قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر۔

چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی.

ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365 Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: السلام علیکم پاکستان.
1: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Cool King.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
7: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
8: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
10: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
11: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
12: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
13: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी. जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
9: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
15: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
16: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही MCB वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. MCB बैंक फॉर लाइफ.
17: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
18: शराय तो जवाबित लागू है.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
1: And
9: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology. Jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
13: Hire T3 AC Expert. expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
11: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
13: And Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
11: And
16: MCB बैंक for life.
11: And
13: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: And

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे, और इस अच्छे मौसम को जो मुश्किल से हो जाता है कराची में, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह का वक्त है और बादल छाए हैं और गर्मी तो है अलबत्ता, लेकिन चलो बादलों को देख के दिल को थोड़ी सी ताजगी का एहसास होता है। और अपनी सुबह का आगाज कीजिए अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी। और हम हमेशा जो है अपने शो का आगाज अल्लाह ताला के जिक्र से करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ, और हम पढ़ रहे हैं सूरह दोहा का तर्जुमा। सूरह दोहा बहुत छोटी सी सूरत है, 11 आयात की, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और इसकी एक एक आयत बहुत प्यारी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम पढ़ते हैं आयत नंबर 7 से आगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया, तो किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती ना करो और किसी भी सूरत मांगने वाले को ना झिड़को, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और कितनी प्यारी बात है कि यतीम पर सख्ती ना करो, क्योंकि एक तो उसका बाप नहीं है और वो कितना तनहा खेला और आप उस पर सख्ती करें, तो ये बहुत अल्लाह ताला को नापसंद है बात। और मांगने वाले को ना छिड़को, और ऐसा होता भी है कि कोई ना कोई मांग रहा होता है, और इवन हमारे यहाँ तो कराची के अंदर कभी कभी मांगने वाले ज्यादा अमीर हैं। मुझे तो पता भी ये चला है कि जो मांग रहा है पैसे, वो पता नहीं सालों से मांग मांग के उसने अपने बंगले बना दिए, लेकिन फिर भी छिड़कना नहीं है, उसको डांटना नहीं है सबके सामने, और भले आपको नहीं उसको पैसे दें मगर उसको फिर कुछ बुरा भला भी ना बोले सबके सामने। ना जाने कौन हाजतमंद है, अब जिसने हाथ फैला दिया तो फैला दिया, अब आप उसकी नीयतें देखने लगे और नीयतें तो अल्लाह ही जानता है। तो झिड़कना और किसी की बेइज्जती करना, सख्ती करना, ये सारी बातें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आपके पास अल्लाह की कोई नेमत है तो फिर अल्लाह का खूब शुक्र भी करें, और अगर आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी है, कोई ब्लेसिंग दी है, तो बताएं कि अल्लाह का मुझ पर करम हुआ है। लोग छुपाते हैं, अक्सर लोग नजर ना लगने की वजह से भी छुपाते हैं कि नजर ही ना लग जाए, लेकिन लोग मैंने देखा छुपाते हैं। कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो गया, अपने रिश्तेदारों से नहीं, नहीं वो तो बस अचानक से जाना पड़ गया, और बस हम तो हमेशा रोना ही रोते रहते हैं। कुछ लोग जी अभी तो बिल्कुल पैसे नहीं है हमारे पास, कोई ये नहीं कहता नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है अभी मैं अभी जो है मुझे टेंडर मिला है, लेकिन कोई बताएगा नहीं ये बात है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उसको भी लोगों को बताना चाहिए कि अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत करम है। एनीवेज आप को मैं आज का टॉपिक बता दूं कि नहीं, खैर मैं आपका आज के टॉपिक में आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी हम सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में ये कलाम।

0: 15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्वीन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC, and
2: Higher Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
1: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
6: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
0: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ। एंड
7: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड

0: वेलकम बैक जी, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। होपफुली आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी, आप हंसते गाते खिलखिलाते जा रहे हैं होंगे, जहां भी जा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, नहीं भी बेचारा तो बंदा फेक स्माइल भी कर सकता है, और फेक स्माइल करते करते करते करते करते करते फिर वो स्माइल असली हो जाती है। तो जरा कोशिश करें मुस्कराने की, और क्योंकि सुबह सुबह मूड अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सुबह सुबह आपका मूड अच्छा नहीं है तो फिर आपने ये तय कर लिया होता है कि फिर पूरी दुनिया का मूड आप खराब करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने सुबह मूड अच्छा रखें, इसलिए वो लोग मुझे बुलवाते हैं लोग यहाँ पे आके कि आप आ जाए और शो करें। खैर मेरी जो बातें हैं कि अब मैं आपको आज का हमारा टॉपिक बताना चाहती हूँ, और आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि क्या आपने कभी बदला लिया है किसी से। और ऐसे तो कोई आप शरीफ हैं कि कभी ना बदला लिया हो, है ना। भी लोग बोलेंगे नहीं जी हम तो नहीं लेते, हम तो बस छोड़ देते हैं किस्मत पे। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग लेते भी हैं बदला, और कभी कभी बदला लेने का भी कोई ऐसा मजा आता है ना कि बस दिल ठंड पै जाती है। खैर तो आप मुझे बताएं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, क्या आपने कभी जिंदगी में किसी से बदला लिया है, आज बता दें। इतनी शर्माने की क्या बात, हो सकता है कि मैं भी इंस्पायर हो जाऊं आप लोगों की बातों से और मैं भी किसी से बदले लेना शुरू कर दूं। वैसे ना मुझे मेरी तो पूरी लंबी लिस्ट है, और उसमें क्या कहते हैं बड़े मैंने लोगों से बदले लेने हैं। सोच है आपकी कि मेरी तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता रही हूं, लेकिन मैंने लिस्ट पे कुछ तो अल्लाह ताला खुद ही दिखा देते हैं उन लोगों का अंजाम जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी अभी बाकी हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा मजीद जज्बाती हो जाऊं, तो मैं आपको बता देती हूं कि आपने मुझे मैसेज कैसे करना है और कैसे बताना है कि आपने किसी से बदला लिया है कि नहीं। तो आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समीहा की फेसबुक पेज पे या @RJ Samiha इंस्टाग्राम पे, और ये बताएं कि आपने कभी किसी से बदला लिया है, और मतलब बदला लिया तो क्या किया उस बंदे के साथ। और रही बलोच, आपको भी गुड मॉर्निंग है हमारी तरफ से, है ठीक है, आप सही है। और तो इसलिए हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि आपने कभी किसी से बदला लिया है या नहीं। एनजीक के मैसेजेस आ गए हैं सुबह सुबह सुबह सुबह। ओके टॉपिक हमेशा ऑफ है, कितने अफसोस की बात है। वैसे चलें क्या याद करेंगे, आपको मैसेज भेज देती हूँ मैं। ओके तो यही है हमारा टॉपिक आज का कि आपने कभी किसी से बदला लिया, किसी को एक थप्पड़ घूंसा मारा है बदला लेने के लिए। खैर कराची में तो लोग ऐसे वैसे तैयार होते हैं यार, एक उसने मार दिया, गाड़ी अगर लगी तो आपने जो है ना उस बंदे को मार देना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है आपकी गाड़ी लगी, जितनी आपकी गाड़ी लगी है आप उसकी गाड़ी मार दो, उतनी बंदे को मारने की क्या जरूरत है। क्योंकि आपको मैं बात बताऊं, कोई बंदा जानकर कपड़े नहीं जलाता और कोई बंदा जानकर गाड़ी मतलब किसी की नहीं मारता। तो अब रोड पे है, हो जाता है बंदा, वैसे कराची में लोग हर वक्त टेंशन में रहता है, तो उसमें इंसान को मारने की क्या जरूरत है यार। इंसान को ना मारो, गाड़ी तो आ जाएगी, इंसान को नुकसान पहुंच गया, उसका दांत आपने तोड़ दिया है, कोई ज्यादा उसको चोट लग गई तो वो कहां से आएगा। तो कोई फखर की बात नहीं है ये कहना कि जी हमने रोड पे उसको ये मारा वो मारा, ऐसी कोई फखर की बात नहीं है। गुस्सा कंट्रोल करना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ अलबत्ता अगर वो गवर्नमेंट की गाड़ी है या वो फिर आपके ऊपर है, गवर्नमेंट की गाड़ी वाले तो खुद ही बंदा हाथ चढ़ के नहीं सर आप ये गाड़ी भी ले लें सर, आप मतलब आपने गाड़ी मेरी मार दी है, मुझ पर एहसान है, तो ऐसे लोग हाथ जुड़ के खड़े होते हैं। हाँ गरीब बंदा कोई आ जाए, मोटरसाइकिल वाला आ जाए या फिर और गलती से बड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दे, या मोटरसाइकिल बड़ी गाड़ी को हिट कर दे, या छोटी गाड़ी का भी होता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनके पास शहर के अंदर काली काली बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर SUVs, तो वो उनके लिए छोटी गाड़ियों को अहमियत है नहीं, क्योंकि उनको अफसोस होता है, कहता है कि यार ये हमारे सामने चलती ही क्यों है, क्यों भला। इसलिए आपने रोड भी अलग बना दिए शारे भुट्टो, जिसमें ज्यादा आपको ये गाड़ियां नजर आएंगी, वो आपको चिंची रिक्शा मोटरसाइकिल में बनाई दिया, हटाओ इन लोग गरीब लोग, गरीब गरीबों को जाने का मौका ही नहीं मिला शारे भुट्टो में, क्यों भाई आप गरीबों के लिए भी बना देते एक लेन मतलब मोटरसाइकिल। जरूरी नहीं कि सारे मोटरसाइकिल वाले गरीब हो, मतलब अमीर भी होते हैं मोटरसाइकिल वाले, लेकिन उनके लिए कोई आपने सहूलत नहीं दी, ये अपनी ही गाड़ियां लेके क्योंकि उनको जाना होता है हैदराबाद सखल लड़काना आगे, तो वो भी अपने लिए करना है। हाय सिंध गवर्नमेंट क्या मैं आपको बोलूं, कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, किसी न किसी तरह अंजाम हम भी देखेंगे आपका। खैर और एनीवेज तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का, ये जानने का कि आपने कभी किसी से बदला लिया है, बदले वाली कहानियां हमसे शेयर करें। और बाजी आप भी शेयर करें, आज आप बता दें बाजी
1: کہ آپ نے کبھی کسی سے بتلا لیا ہے کہ نہیں ہاں جی آپ سے بات کر رہی ہوں میں نا, آپ نے جو بلو سوٹ پہنا ہوا ہے بڑی پیاری لگ رہی ہے ویسے آپ. اوکے جی, اور ہم ابھی پلے کر رہے ہیں یہ گانا, اینڈ اس ٹائم پر یوزلی پلے انگلش سانگ کیونکہ مجھے ذرا ڈانس کرنا ہوتا ہے, اور آج کل فٹ بال کا دور چل رہا ہے اور بڑے مقابلے ہیں اور اسپورٹس میں بدلہ لینے کا جو مزہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی سے ہارتے ہیں پھر اس کو جا کے فائنل میں ہراتے ہیں, تو اسپورٹس بنی ہی اسی چیز میں کہ جیتنا ہارنا بدلہ لینا, اور اسی حساب سے گانا ہے ہاؤ یو لائک می ناؤ, اور یہ مائیکل جارڈن کی ایک ڈاکیومینٹری تھی اس کے اندر یہ گانا تھا, اینڈ اٹ ریلی ریلی گیوز دا وائب, سو لیٹس انجوائے. میں تو جا رہی ہوں ڈانس کرنے, اگر آپ کا بھی جو چاہ رہا ہے تو آپ بھی کر لیں, منع نہیں ہے.

राय जी, आप सुन रहे थे ये गाना हाउ यू लाइक मी नाउ, कि अब तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ अब बताओ है, अब तो मेरे पास पैसा भी आ गया है, अब तो मैं पावरफुल भी हो गया हूँ। तो ये होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता आपको है मुझे सब। अच्छा, लोग इतने यहाँ के मीन है दुनिया में, अगर आपके साथ कोई बुरा हो जाता है, आपके कोई हालात खराब हो जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ इसने हरकतें ही ऐसी की होंगी, ऐसा ही है। और मतलब लोग ये समझते हैं कि जो भी बुरा किसी के साथ होता है तो वो उसी के जिम्मेदार वो खुद ही है। और कहीं कभी होता भी है कि अक्सर एक इंसान पे आजमाइश भी आती है, मगर लोग कहते हैं देखा बड़ा ओढ़ा था, बड़े पैसे कमा रहा था, अभी इलॉन मस्क को सब बुरा भला बोले थे, अच्छा उसने देखो क्या किया, एक्स ले लिया और कितना बुरा हाल हुआ एक्स का। लेकिन उसके बाद अभी देखो उसको ट्रम्प ने भी अपना दोस्त नहीं अभी बनाना, और ये वो, अच्छा वो ट्रिलियनेयर पता चल गया कि वो दुनिया का वाकई में पहला ट्रिलियनेयर है, मतलब अमीर तरीन आदमी है दुनिया का, और अब सबको उसके अंदर खूबियां नजर आना शुरू हो गई हैं। तो पैसा मतलब कि वो तो उसकी ये बात, उसका ये डिसिप्लिन, ये वर्क एथिक, वो ऐसे काम करता है 100% फोकस, नो नॉइज, ये दुनिया है। आपके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, आपकी सारी बुराइयों पे ना पर्दा आ जाता है, और कहीं आपकी आपके साथ कुछ बुरा हो और बोले अच्छा, तो खैर दुनिया के अंदर जिंदगी में साथ तमाशाई ना हो कि जी दूसरों को देखता रहे, उनकी कामयाबियां और नाकामियों पे बात करता रहे। इंसान को चाहिए कि अपने आप पे फोकस करे और अपने आप को मजबूत, काबिल और खूबसूरत बनाए। जी हाँ, खूबसूरती बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करें आज अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, ये भी मेरा एक सवाल हो सकता है वैसे। खैर कुछ लोग तो बड़ी इंजीर भिगो भिगो के खा रहे हैं, ओहो ज्यादा ही ना खूबसूरत हो जाए। खैर, और इकबाल हुसैन और रहीम बलोच साहब का भी मैसेज आ गया मेरे पास, तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आपने कभी किसी से बदला लिया है, और हमें आप मैसेज करके बताएं डिटेल में। और क्योंकि मैं आई एम ऑल फॉर बदला, न जाने कितने लोगों से मैंने बदला लेना है लिटरली। आपको लेना है किसी से? कोई ना कोई तो होगा, एक आध सोचो सोचो, याद करें वही रिश्तेदार, याद करें ना, मैं बच्चों की शादी में आपको नहीं बुलाया था है, हालांकि आपने सबकी शादी में बुलाया था, आप याद करें। खैर तो खैर आप लोग मुझे मैसेज करके याद करके बताएं, आप नाम भी बता सकते हैं लोगों का, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको भेजेंगे 3636 पर। आज आपने हमें सुनानी है अपने बदले की कहानी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन DNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
13: MCB1 current account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
14: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
15: शराइत तो जवाबित लागू है।
16: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
17: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
10: and
7: Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
10: and
7: Hire
10: T3 AC Expert,
18: Extreme D3 inverter for extreme heat. Higher.
5: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले
18: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
13: एंड MCB बैंक For life
18: and live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
13: And

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखी।
5: का टाइम से मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साडीया वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सब कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 24/7 365।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक्स से ही कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100 traffic update.
1: अपडेट के साथ मैं हूं फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त कुछ जगहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें राशिद मिन्हास रोड से वो ट्रैफिक जो जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ और जौहर मोड़ से मिलेनियम मॉल और वहां से डीके रोड शारा फैसल की जानी आ रहा है। दरमियाने रास्ते पर ट्रैफिक कुछ स्लो है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड का वो ट्रैफिक पूरा चौरंगी से नीपा चौरंगी की जानब आ रहा है। तामीराती काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी कुछ मुतासर है। इसके साथ साथ चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो इस वक्त आ रहा है मुर्तजा चौरंगी से रोड चौरंगी की जानब, उसके दरमियानी रास्ते पर सिंगर चौरंगी के अतराफ में ट्रैफिक का कुछ दबाव है। लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आरजे समीहा। हम बात कर रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी से बदला लिया है, और इरफान सलीम साहब का मैसेज आया है कि जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बदला लिया जाए। अजीम इंसान है आप, यहां पर लंबी लिस्ट है बदला जिससे मुझे बदला लेना है। और नसीर अहमद का कह रहे हैं मैं फैसलाबाद से आपको सुनता हूं। थैंक यू नसीर अहमद, कैसे आप? ठीक है। फैसलाबाद का मौसम कैसा है और क्या हो रहा है? आम वाम खाए आपने? और आम तो मैंने बहुत खाए, मैंने चाहता है बस आम ही आम हो दुनिया के अंदर, पूरे दिन खाना ना हो मगर आम हो। आम वैसे क्या चीज अल्लाह ने बना दी है वैसे, है ना? आम आम जो है ना वो बस इस गर्मी को भी खास बना देते हैं। खैर, और हम बात करें बदला लेने की, यही हमारा आज का टॉपिक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे एक्स बॉसेस जो मुझे बोलने नहीं देते थे मीटिंग में, अब मैं बोल रही हूं ना, उनसे तो मुझे ऐसे बदला लेना था, किनका पूरा प्लान बनाया था। इस प्लान के चक्कर में मैंने जाने कहां कहां किन किन लोगों से मैंने मदद नहीं ली। इसके अलावा मेरा एक अंडरग्राउंड गैंग भी है, और उसका नाम मैं बता वो अंडरग्राउंड है, मैं नाम नहीं बता सकती। तो उसमें अंडरग्राउंड मैंने रखा हुआ था मैं, क्योंकि आप कभी कभी कराची के मैं इंसाफ तो मिलने से रहा, पुलिस का जो आप हाल देखेंगे इसने आपको इंसाफ दिलाना है, कभी उनको हमारी मदद की जरूरत, उनका हाल और हुलिया हो रहा होता है। तो इसमें बंदे को स्ट्रांग रहना और अपना गैंग बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी में भी सिंध गवर्नमेंट फेल ही है, हर चीज में फेल है। वो भी मतलब एक आउटस्टैंडिंग तरीके से फेल है, ऐसी बात भी नहीं, स्पेक्टेकुलर तरीके से। तो खैर, तो इसी एक अपना इंसान का अपना एक गैंग होना चाहिए, जो मतलब अपने दोस्तों का गैंग, कभी आपको मसला हो जाए, किसी को मारना हो, किसी की हड्डियां वड्डियां तोड़नी हो, तो मतलब काम आते हैं ऐसे गैंग। जी जरूरी है, और खवातीन के लिए तो ज्यादा जरूरी है ये बात कि अपने साथ थोड़ी बहुत हॉकी, वैसे भी हम लोग ना हॉकी में जीत रहे हैं ना बैट में क्रिकेट में जीत रहे हैं, तो हॉकी और बैट जरूर रखें अपने पास, अपनी गाड़ियों के अंदर, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और मैं जो आप क्या कहते हैं जो मोबाइल स्नैचर्स, उनको बता दूं कि पुराने हो गए ऐसे हर में, अब लोग बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो तैयार रहें कि आप वो आगे से फायर भी कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते वेपन्स जरूर अब जब भी रखें, लाइसेंस वाले रखें, बगैर लाइसेंस के वेपन्स को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन आना चाहिए चलाना। खैर, क्योंकि कराची है जी, कराची में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक ट्रैक फ्रॉम द मूवी किल बिल। अगर आपने नहीं देखी किल बिल तो आपको जरूर देखनी चाहिए, किल बिल 1 और किल बिल 2। इसमें यही हुआ है कि एक औरत को उसकी शादी वाले दिन उसी के गैंग मेंबर अटैक करते हैं और बहुत सारी गोलियां मारते हैं, और उनको लगता है कि लड़की मर गई है, लेकिन वो लड़की मरती नहीं है, कोमा में चली जाती है। फिर वो कोमा से उठ के सबसे बदले लेती है, वो लिस्ट बनाती है, फिर वो जाके जापान के अंदर ट्रेनिंग हासिल करती है, और फिर चुन चुन के उन तमाम अपने दुश्मनों को मारती है। तो इससे मैंने ये सबक हमने बहुत सीखे, मैंने और मेरी बहन ने, मेरी बहन ने तो डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं किल बिल के, इतनी इंस्पायर्ड इस मूवी से। तो आइए आपको भी सुनाते हैं ये डायलॉग्स।
1: Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for 4 years. When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one, the one I'm driving to right now, the only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
2: It's 9 a.m. The time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गर्म, मौसम गर्म, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गर्म, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF बिटेड स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, More possibilities.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
7: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے 4 بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.
8: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
9: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
10: نیا نو فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹرو انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فروسٹ نو وریز.
11: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوگی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको एग एंड कप दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड अप रहे 100% नीचे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset haasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease. Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: MCB One Current Account. हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
8: शराय तो जवाबित लागू है।
9: This program is brought to you by
10: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
9: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC, and
11: Hair Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, True Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
9: and
11: Hair T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
9: And
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
6: एंड एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। एंड
2: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: एंड

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे पास सॉरी जमा चुके हैं। एक्साइटेड हो गई हूं मैं आज, क्योंकि आज बदले का टॉपिक है और मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं और मैं तो सबके नाम है, लेकिन मैं फिर भी यार इतनी मुझे लगता है कि मैं शरीफ इंसान हूं कि मैं उनका नाम नहीं लिख दूं। मैं तो आता कि नाम, फोन नंबर, एड्रेस, घर का जो है ना वो दे दूं, ताकि सब जाके ना उनको वो बल्कि वो जो लगे रहो मुन्ना भाई में, तो वो फूल दे रहे थे ना गेटवे स्कूल मामू में, तो कहूंगी ये कांटे भेजो उनको जहां भी वो नजर आए। खैर, तो आप लोगों के मैसेजेस हैं वजाहत हाशमी, आली अंसारी, आबिद अमीर साहब और इसके अलावा लाला रुख का भी मैसेज आ गया हमारे पास, अब्दुल रऊफ का भी आ गया है, थैंक यू थैंक यू। और मुराद हाशमी जो है वहां से पुलाव की, इज इट व्हाट काइंड ऑफ पुलाव, लेट मी सी, इज दिस इज मटन पुलाव, बीफ पुलाव है, कीमा कीमे और पुलाव है, आलू भी नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड से लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, डब मतलब जबरदस्त। अभी तो मेरी आप क्यों रोती हुई अपने उनको इमोजी दिए, वो खाना खा रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, चल रहे इंग्लैंड में खा रहे हैं। और मुराद हाशमी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, रिवेंज माइट नॉट बी द आंसर बट अंडरस्टैंडिंग व्हाई कैन ब्रिंग क्लोजर एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। खैर मैं तो क्लोजर उनकी जान लेकर ही मिलेगा मुझे ऐसे नहीं आना क्लोजर, लेकिन थैंक यू मुराद हाशमी। वहां इंग्लैंड में क्या गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है, यहां पे तो बड़ी गर्मी है सच में, अभी आजकल थोड़े बादल छाए हैं लेकिन वैसे बड़ी गर्मी है, एसी फुल ऑन है और एसी के साथ साथ हमारे दिल की धड़कनें भी ऑन रहती हैं, ऐसी बात नहीं, या तो गर्मी को बर्दाश्त करो या एसी के साथ बिजली के बिल के बारे में सोचते रहो, तो ये है कराची का हाल। आगे आप बताएं, लाला रुख कह रही है कि बदला तो नहीं लिया पर मकाफाते अमल देखा है, फिर उसको याद दहानी कराई है बस। अच्छा कैसे कराई, देखा मैंने तो कहा था ना कि तुम्हारे साथ यही होगा यही होगा, और मतलब मकाफाते अमल आपने कैसे उसको बताया कि देखो तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन बड़ा क्या मोमेंट होता है वैसे जब बंदा कहता है अच्छा तुमने मेरा दिल दुखाया, खासतौर पर उनसे बदला लेना जो आपको रिजेक्ट करके चले गए और बाद में आपको उनसे हैंडसम बंदा मिल गया, तुम तो गंजे हो गए, जरा मेरे बंदे को देखो और अपने आप को देखो, बड़ा तुम्हें भरम था ना, तो ये जवानी है आनी जानी दोस्त लो, इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं और अपने आप को ज्यादा ना समझें। और आबिद अमीर साहब का भी मैसेज आया हुआ है, आबिद अमीर साहब का भी मैसेज हम शामिल करेंगे क्योंकि जबरदस्त मौजू है, और अगर वो बदला ले नहीं पाएंगे बहुत ही, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आबिद अमीर जो है वो एक बहुत ही शरीफ नफ्स और शरीफ इंसान है, वो नहीं लेंगे बदला। मैं तो आई एम ऑल फॉर बदला, मैं को बता रही हूँ, मेरा अपना गैंग है और मतलब बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खैर हम इस अभी आगे हैं क्लासिक टाइम पे दोस्तों, और क्लासिक टाइम पे हम खैर फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा था कि हम देखेंगे लगा दूं, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी, लेकिन वो थोड़ा भी इतना टाइम नहीं होगा और हम देखेंगे काफी तवील है, और वो जब आप लगा दें आपको पूरा सुनने का दिल चाहता है। खैर अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के एक गाना, वो मुझे मिल जाए, हाँ जी मिल गया, और वो है कि वो इश्क जो हमसे रूट गया अब उसका हाल सुनाए क्या, कि जो चला गया अब उसका हम तुम्हें हाल सुनाएं क्या, लेकिन अल्लाह ही उसको पूछेगा। और आप लोग मुझे मैसेज करें, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि एशिया स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर, या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर आपने भी कभी किसी से अपनी जिंदगी में बदला लिया है। इंतजार रहेगा आपके बहादुर मैसेज का, और अभी आप फिलहाल इंजॉय करें ये ट्रैक बाय फरीदा खानम।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hari General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par ke. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
2: Higher ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean two inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है श्रॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयान मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्रॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko bhi mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
2: And Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. True inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
6: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
7: लाइफ बॉय एंटी डैंडर्फ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड एमसीबी बैंक फॉर लाइफ एंड
8: लाइव राइडर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? चौबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और चौबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
6: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
8: This program is brought to you by
9: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
10: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
11: and Haier Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
12: and Haier T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
13: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: एंड एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
3: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
5: एंड
14: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
5: एंड
14: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स
5: एंड आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
15: FM 247365

0: ऑल राइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हम जान रहे हैं आप लोगों की दिल की बातें बदले के मुतालिक। कुछ लोग हैं बड़े अजीम लोग, वो मैं ऐसी नहीं हूं कि जी माफ कर देना चाहिए, सुकून में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग हैं कि जो कहते नहीं, इसको तो वहां तक पहुंचाओ ना कि बंदे ने सोचा ना हो। तो हर तरीके का जो है ना वो बदला है। खैर, और मोहम्मद अली अंसारी और अदनान अहमद का मैसेज आया। अदनान अहमद अली रजा कह रहे हैं खामोश रहकर आप बदला ले सकते हैं। ऐसे खामोशी भी, चुप की मार भी जो है ना वो बड़ी कुछ सॉलिड होती है। और आमिद अमीर कह, इस वक्त मैं अपने आप से बदला ले रहा हूं जो जिंदगी में नहीं कर पाया, नहीं पढ़ पाया, अब अपने बच्चों में बराबर करूंगा। अभी तक काम पर नहीं पहुंचा क्योंकि समर वेकेशन में तफसीर कुरान का कोर्स करवाना था। उससे पहले जो बेटियां शरीयत का कोर्स कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चल अल्लाह ताला आपके बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे। इसके अलावा अदनान अहमद कह रहे, बदला नहीं लिया कभी नफरत को आगे बढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, खामोश हो जाता हूं, माफ कर देना ही असल सुकून है। आज अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि कुदरत ने बेहतर हिसाब कर दिया। बदला लेने पर दस्तरस हासिल थी, लेकिन उस समय समझ आया कि मैं जिस शख्स को तकलीफ पहुंचाऊंगा वो मैं खुद बन जाऊंगा, इसलिए पीछे हट गया। खामोशी बेहतरीन इंतकाम है, माफ करना सबसे बड़ा बदला है। आपको कोई तकलीफ देकर परेशान करे, आप अन्ना पर छोड़ दो, इग्नोर करके आगे निकल जाओ, वही सबसे कड़वा बदला होता है। बेहतरीन बदला यह है कि बदला ना लिया जाए। हर दर्द का जवाब बदला नहीं होता, हर धोखा आपकी अहमियत के काबिल नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत कदम यह होता है कि आप खामोशी से दूर हो जाए। मगर बॉस से कैसे दूर हो, ये तो समझ नहीं आता ना बंदे को कि कैसे बंदे से दूर है। मजबूरी भी होती, बंदे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बॉस को ये समझना चाहिए, अगर आप भी बॉस है, कि अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा सलूक करें, कोशिश करें कि ऐसे काम करें कि लोग आपके लिए दुआएं दें, उनको छुट्टी दे दें, तनख्वाह बढ़ा दें, तो बेहतर नहीं है बजाय इसके कि दिन रात जो है अब दुआएं देते हैं, वो भी उनका पूरा खानदान भी आपकी सख्ती की वजह से। मोहम्मद अली अंसारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं लिया, पर लूंगा जरूर, और वो भी इतना डेडली होगा कि दुनिया देखेगी। ओए होए, ये तो सॉलिड मैसेज आई है तो बंदे के बारे में। अच्छा, हुआ क्या था आखिर, ये तो बताएं। मोहम्मद अली अंसारी कह, आज समिया जी मेरे रिवेंज की वजह ऐसी है कि आप सुनकर शेक हो जाएंगी। मैंने वो दर्द बर्दाश्त किया है जो कोई बर्दाश्त ना कर सके। काश शो में कॉलिंग होती तो बताता। नहीं, वैसे भी बता सकते हैं मुझे प्राइवेट मैसेज, डीएम करके भी मैं पढ़ लूंगी, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र हौसला दे और बर्दाश्त की भी हिम्मत दे। कुछ लोगों को मैं बता रही हूँ, मैंने एक मूवी देखी थी सरकार, और सरकार के अंदर शुरू का सीन था जिसके अंदर वो बंदा गाइड कर रहा था दूसरे बंदे को, अपने गैंग के नए मेंबर को, कि देखो ऐसे हड्डी तोड़नी है, तुम सही नहीं मारे यार, देखो नहीं नहीं यहां से मारो, यहां से तुम मारोगे तो घुटना टूटेगा। वो इतने अच्छे से उसको गाइड कर रहा था कि ऐसे मारो तो हड्डियां अच्छे तरीके से टूटती हैं। मेरा ना बिल्कुल ऐसा ही करने का दिल जाता है कुछ लोगों के साथ। ओह माय गॉड, सीरियसली। और हैं ऐसे लोग बहुत सारे, कुछ मेरे अपने जाती दुश्मन हैं, कुछ इस मुल्क के दुश्मन हैं, कि उनको तो मुझे लगता है कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। रिश्वत खोरों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो आप कभी माफ नहीं कर सकते। 2019 के अंदर पिंकी पे पहला केस हुआ था, और उस वक्त सोचा अगर पकड़ी जाती पिंकी, या अगर किसी ने रिश्वत लेके उसको नहीं छोड़ा होता, तो कितने लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन रिश्वत लेके आपको ये नहीं पता कि आप मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी आखिरत का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हो। अल्लाह ताला देखेगा, जरा सी आपने रिश्वत ले ली जो वाकई में फटाफट खत्म भी हो जाता है, रिश्वत के पैसों में आई डोंट थिंक बरकत होती है, लेकिन आपने कौम का कितना नुकसान किया। ऐसा जो रिश्वत लेके गलत लोगों को सीटें दे देते हैं, और जो लोग रिश्वत लेके इलेक्शंस जीत रहे हैं, कि अल्लाह ताला नहीं देखेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो रिश्वत आई थिंक, और जो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। मैंने बहुत ऐसे सियासतदानों का अंजाम भी देखा है जो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। तो कभी भी इम्प्रेस मत हो काली गाड़ियों वालों से, तो आप कभी भी इम्प्रेस ना हो। काली गाड़ियां जी, डिफेंस में बंगला, इनकी अपने अंदर इनकी लाइफ में देखी है, बहुत ही दुखी। इनके बच्चे फरमाबरदार नहीं है, बच्चे बीमार हैं या बच्चे ड्रग्स में हैं। तो कभी लोगों से इम्प्रेस ना हो, क्योंकि ये लोग आम लोगों को खुद भी इंसान नहीं समझते। تو اللہ تعالیٰ بچائے رشوت خوروں سے اور ملک دشمنوں سے. اور جو لوگ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے, گورنمنٹ اداروں میں بھی دیر سے پہنچتے ہیں, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, ان لوگوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کام چور ہیں, یہ بھی ایک طریقے کی چوری ہے, یہ بھی ایک طریقے کی کرپشن ہے کہ آپ آئے ہیں, حاضری لگائی ہے اور بس چلے گئے ہیں. گورنمنٹ اسکولس کا یہی حال اس وجہ سے ہے کہ لوگ پیسہ لے کے وہاں پہ جو ہے پیسہ دے کے وہ نوکریاں لے لیتے ہیں. سو یا ان لوگوں کو میں تو کبھی معاف نہیں کر سکتی, آپ لوگ اگر معاف کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. خیر ہماری باتیں جاری رہیں گی. او مائی گاڈ, باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا, گانے کے ٹائم ہی نکل جاتا. خیر کوئی بات نہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد اور انشاءاللہ آپ کے لیے گانا بھی لگائیں گے. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے بدلہ لینا ہے یا آپ بدلہ لینے میں بہت اچھے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں, ہو سکتا ہے ہم بھی کچھ ٹپس آپ سے لے کے ہم بھی کچھ سیکھ لیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد, مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیا انسٹاگرام پہ.
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے 4 بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset haasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: ہائر کا نیا نو فلوس آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فلوس, نو وریز.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے جیز کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنی جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This program is brought to you by
8: AGS Tubular. Dikhaye kaam AGS Tubular battery, dil ko hai aaram.
9: And Cool King hair oil, jaise chalta phirta AC.
4: And Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
4: Hire T3 AC expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
1: And
6: agar aap hai inDrive car, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
4: لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ, 100% آگے بڑھو بنا رکے.
7: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
1: اینڈ
4: لائف رائڈر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
7: اینڈ

0: Hitachi, Haier Mini, LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
1: खवातीन हजरात, मंशियात वो जहर बादल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साहिब कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपनी शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। गर्दन से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक गांव, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: हायर का नया लो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके। हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
4: facebook.com/fm247365 fm247365।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: in Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: This program is brought to you by Ajhi, Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार लेकिन किधर, उस वक्त मेरा सेंस वो

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
5: Let's
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
3: FM 100.
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: कुकिंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
1: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
3: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
7: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: honking.
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे

0: This program is brought to you by
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: And Aaj Higher Mini LED TV Line. Aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: And
4: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And
5: MCB Bank for Life.
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाओ।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: बैक टू बैक, बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक। ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक। दिस इज एफ

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
6: And aaj hi Higher mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: And
7: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries.
0: And
8: MCB bank for life.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
14: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
3: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
4: एंड
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
4: एंड
6: MCB बैंक फॉर लाइफ.
7: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
8: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
9: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
10: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.

0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: कूल किंग बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। Higher
6: and आज ही Higher Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
7: And
8: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost No Worries।
6: And
9: MCB Bank for Life।
10: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
11: FM247365 It's 24 hours non-stop vibration connecting you, connecting, holding you, holding with FM 100.
12: FM 100. FM 100.

0: Your location for maximum music.
1: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
2: शरायत जवाबित लागू है।
3: This program is brought to you by
4: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
5: And aaj hi Higher Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And
7: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: And
8: MCB Bank for Life.
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365
11: FM 247365

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: थिंकिंग। बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by MCB Bank for Life.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: This program is brought to you by MCB Bank for Life.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7 365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk. Only music, no RJ talk. This is FM.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
4: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
6: And aaj hi Hire Mini LED TV line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड लाइफबॉय एंटी डैंडरफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
0: एंड
4: MCB बैंक For life
0: and
9: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
10: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
11: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
12: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आप

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्रॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्रॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC.
6: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए.
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
8: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
9: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ.
10: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
12: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा.
13: टाइम से मनू ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
14: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब छुटिया.
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 24/7/365

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Mikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
7: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
10: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 Inverter AC. अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
4: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
8: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
9: And आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
0: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
11: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: एंड

0: को है आराम
1: एंड
2: कूलिंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
1: एंड
3: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
1: एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड
5: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
1: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे।
1: एंड

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार, बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड, 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ। आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
5: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Cool King.
3: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
7: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
8: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
9: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
10: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
9: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye,
0: and
8: Agar Aap Hai InDrive Car, Bike Ya Rickshaw Driver, Toh 4 Mai Se 12 July Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le,
0: and
11: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho, Bina Ruke,
0: and
12: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today,
0: and

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And Aji Fire Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं एंड
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
4: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
7: कूल किंग
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या
9: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
0: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैट सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
11: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
13: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
3: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
13: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो
14: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
15: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
4: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है,
7: हर जीत की पहचान है
3: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
8: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
9: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
11: Let's celebrate
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: Evening drive time.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Cool King.
2: Rindy ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. लेकिन बीपी हाई.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा. श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: कूल किंग.
2: बिजली का बिल देखा. आंखों ने डबल चेक किया. फिर भी शॉक सेम. इसी बात. लेकिन बीपी हाई.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3

0: सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है हर जीत की पहचान है एंड
0: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
0: and
3: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
5: 100 FM
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset haasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: 100 FM
7: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
8: शराय तो जवाबित लागू है
0: This program is brought to you by
9: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost, No Worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365 FM 100
11: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
10: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
4: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: This program is brought to you by
7: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
6: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
6: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے،

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: This program is brought to you by
5: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
9: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
10: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
11: हमारी जिम्मेदारी है।
12: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
13: fm247365.
14: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 247-365.
1: Flashes of sound. SM 100, Pakistan.

0: एजीएस ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: जैफ कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: This program is brought to you by
6: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries।
5: Like us on facebook.com/FM247365। FM 247365।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
6: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
10: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: Like us on facebook.com/fm247365
11: FM 247365

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: FM 100's Time Check It's 10 PM
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पालक से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: facebook.com/fm247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: आता है।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
5: आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात FM 100 पर।
6: ये तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शुभ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज ये माशाल्लाह से देखें तो हम चांद के हिसाब से देखें तो इस वक्त हम मुहर्रम की 2 तारीख में दाखिल हो चुके हैं और यकीनन हमारी मुहर्रम की ट्रांसमिशन का ये पहला प्रोग्राम है और नाम है इसका तारीख करबला। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला इसी तरह आज पहले प्रोग्राम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये प्रोग्राम अपने तसलसुल के साथ में इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे मुख्तलिफ मेहमान ग्रामी जिसमें हमारे मुफ्ती साहबान भी हैं, अल्लामा साहबान भी हैं, मुकर्रर भी हैं, सना खान भी हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करते रहेंगे और इसी तरह इस प्रोग्राम की अगीदत और मोहब्बत बढ़ती रहेगी और आप सबकी मोहब्बतें और चाहते हमारे साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमारे पहले प्रोग्राम के हमारे पहले मेहमान माशाल्लाह आज पहली बार हमारे रेडियो स्टेशन पर जो तशरीफ लाए माशाल्लाह से पहली बार और हमारी खुशनसीबी कि इनसे मुलाकात हमारी आज हुई है। और जनाब मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद शुएब साहब, शुएब अब्बासी साहब
7: जी जनाब,
6: माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब काफी बड़ा नाम हो गया ना, अल्लामा मोहम्मद शुएब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह।

0: आम का मौसम था जब पैदा
1: हुआ, पैदा हुआ तो सही बात
0: है, एक अहम मामला जो वो दादी का इंतकाल हुआ था तब पैदा हुआ था। तो इसी तरीके से पहले के दौर में भी नारे नमरूद को बुनियाद बनाकर या हजरत इब्राहिम की जो हिजरत हुई उसको बुनियाद बनाकर बड़े बड़े वाक्यात को लिखा जाता था। इसी तरह तूफान नूह को बुनियाद बनाकर ये चीज, हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में जो फिरौन गर्क हुआ इसको बुनियाद बनाकर ये मामला किया गया। ठीक इसी तरीके से अरब में अगर आप आ जाएं तो अरब में आपने देखा होगा कि अक्सर आप सुनते होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, आमुल फील के बाद। तो आमुल फील ये अब्राहम जो लेकर आया था लश्कर और काबे पे हमला करना चाहा उसने, तो ये जो एक अहम वाकिया था, इस वाकिये की बुनियाद पर जो बहुत सारे मामला जो डिस्कस किए जाते हैं कि इनकी पैदाइश इस वक्त हुई, ये वाकिया इस वक्त हुआ था। तो वही समझ लीजिए कि हमारा जो इस्लामी माह है जो या इस्लामी साल है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश तो ये थी कि एक बाकायदा एक होना चाहिए, एक जिस तरह औरों ने हिसाब किताब के लिए जिसको तकवीम कहा जाता है कि हिसाब किताब के लिए तारीखें मुकर्रर करना,
1: तारीखें मुकर्रर कर ली
0: है। ये अल्लाह के नबी ख्वाहिश ये जरूर थी कि अल्लाह के नबी के जमाने में ये हो ना सका। और हम अच्छी तरह समझते हैं कि उस वक्त के मामला जो थे कुफार की तरफ से जो दबाव था उसमें जो मामला थे जंगें थी और एक निजाम जो है वो पूरी उम्मत को देके जाना था, उसमें फिर ये मामला नहीं हो सका। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला का दौर गुजरा, उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला का दौर आया, तब जाके ये फिर आपने जिस तरह बहुत सारे काम किए, आपने जो है वो एक फौज का निजाम आपने दिया, पुलिस का निजाम आपने दिया और अदालतों के बहुत सारे निजाम,
1: अदालती निजाम
0: बड़ा दिया। उसी में एक निजाम जो है वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने, चूंकि आपका दिन भी गुजरा है तो उसी की मुनासबत से आप ही ने ये कैलेंडर का जो एक आगाज हुआ है ये आपने किया है। अच्छा भाई वही बात है, कहां से शुरू किया जाए, तो पिछली कौम क्या करती थी, अहम वाक्य को बुनियाद बनाकर जो वो किया करती थी। तो इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने हमारे लिए जो अहम वाक्य था वो था हिजरत,
1: हिजरत सही बात है।
0: तो बस हिजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत फरमाई, इसी हिजरत से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ,
1: हिजरी साल शुरू हो गया, हिजरी कैलेंडर
0: हिजरी शुरू,
1: सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत बात है।
0: अच्छा ये तो हुई हिजरी कैलेंडर यहाँ से, लेकिन क्या इससे पहले क्या इस मुहर्रम की क्या कुछ अहमियत नहीं थी, नहीं अहमियत थी इसकी। अल्लाह ताला ने 12 महीने जिक्र फरमाया, फिर फरमाया मिन्हा अरबातुन हुरुम, इन 12 में से 4 बड़े हुर्मत वाले महीने हैं, और ये हुर्मत वाले महीने इस्लाम से पहले ही हैं।
1: अच्छा पहले ही है।
0: जी हाँ, यानी जो कुफार हैं जो मुशरिकीन हैं वो भी 4 महीनों का अदब किया करते। वो 4 महीने कौन कौन से, रजब इसमें ज़िकादा और ज़िलहज और मुहर्रम, ज़िकाद ज़िलहज मुहर्रम ये 3 एक साथ, और एक रजब, रजब का महीना। तो ये 4 महीने ऐसे थे कि जिनको हुर्मत वाला करार दिया गया, ना सिर्फ इस्लाम ने बल्कि इस्लाम से पहले भी कुफार भी इसका बड़ा अदब किया करते थे। इवन ये कि इसमें जो भी जंग वगैरह हुआ करती थी उसको रोक दिया करते, इतनी इसकी अहमियत थी। तो इससे हमारे देखने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि ये फकत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की कुर्बानी का जिक्र, आपसे मोहब्बत, आपसे इश्क, उसका इजहार ये भी जरूरी है, दीगर जो मामला थे वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि इस्लाम ने जिस तरह इसको हुरमत दी है वैसे पहले भी इसकी हुरमत बाकी थी। तो इस महीने में खास तौर पर हमें इबादत, रियाजात, अल्लाह से दुआएं, इस्तगफार, ये हमें बढ़ा देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको हुरमत वाला महीना कहा है।
1: और लाजमी बात वही कि पहले से, अच्छा फिर देखिए हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारी इज्जत तालों से हमारी मोहब्बत एक है। अच्छा उनसे मोहब्बत हमारी एक इसलिए भी है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी,
0: आपकी मोहब्बत हमारी मोहर्रम से वजह से,
1: मोहर्रम की वजह से तो नहीं है, मोहर्रम की वजह से नहीं है, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो बिल्कुल सिलसिला ही अलग है ना,
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: और हमारी तमाम चीजें, हमारा एहतराम, हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, वो एक सिलसिला हमारा है ही
0: है वो अपने मकाम पर, बिल्कुल ऐसा ही
1: है, बिल्कुल वो यहां से चल रहा
0: है। अच्छा फिर इसमें यह है कि मोहर्रम में फिर इस्लामी के एतबार से देखें हम, यानी इस्लाम के बाद एक तो ये है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की इसमें शहादत, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की शहादत, फिर इसी मुहर्रम की 10 तारीख को अगर हम देखें तो उसे कहा जाता है आशूरे का दिन,
1: आशूरे का दिन,
0: आशूरे का दिन,
1: यौमे आशूरा,
0: आशूरा कहा जाता है। इस यौमे आशूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अहम अहम ऐसे उमूर इस में किए गए हैं कि जो हमें एक मुनफरिद नजर आते हैं, यानी जितनी भी आप तारीख उठा के देख लें पीछे अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत देखें तो उनके साथ जो अहम अहम वाकयात हुए हैं वो यौम आशूरो में ही हुए हैं, 10 मुहर्रम। ठीक है, अहदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान जब बनाई वो भी 10 दिन, 10 मुहर्रम। इससे भी पता चलता है कि जिस महीने में ये तारीख मौजूद है उसकी अहमियत कितनी है।
1: اچھا یہ بھی سنا جاتا ہے کہ قیامت کا جو آئے گی وہ بھی
0: دس محرم کو آئے گی, بالکل وہ بھی دس محرم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان جو آپ کی جو کشتی ہے وہ جودی پار پہ رکی تھی وہ دس محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا
1: دس محرم کو.
0: آپ آئے یہاں پر, آپ نے توبہ استغفار کی, آپ کی جب توبہ قبول کی وہ بھی دس محرم کا دن تھا. اسی طریقے سے یہاں پر آپ کی جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی عرفات کے میدان پر, ایک روایت کے مطابق وہ بھی دس محرم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نعرہ نمرود میں بحفاظت آپ کو جو ہے وہ باہر نکالا, وہ بھی دس محرم کا دن. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و جبریت سے جو نجات ملی ہے وہ بھی دس محرم الحرام کا دن. تو یہ بڑے بڑے واقعات جو وہ ہمیں دنیا کی کائنات کے بڑے بڑے واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس محرم کی 10 تاریخ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 تاریخ کو, جیسا آپ نے ذکر کیا کہ قیامت بھی جو قائم ہوگی, یعنی اس دنیا کا جو اختتام بھی ہوگا
1: وہ بھی دس محرم
0: الحرام, وہ 10 محرم الحرام وہ اس محرم کی تاریخ کو.
1: کیا بات ہے, بہت
0: خوبصورت محرم کی جو وہ اہمیت پتہ چلتی
1: ہے. اور یہ بڑی خاص مطلب چیزیں بڑی خاص غور کیا جائے, کہ بیٹھ کے غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی مطلب محرم کی اہمیت ہے کتنی. چلیے ایک بریک بھی ہم لیتے ہیں, اور اسے بریک کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ آپ کے کمنٹس بھی ہمیں کچھ جوائن بھی کر چکے ہیں گجرا سے, تو انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.

ایک گھر جو ملے شہر

فاطمہ

تک کے حاکم نکیلے

0: वेलकम बैक कहेंगे। शाखों के दो पत्ते, हाय हाय यार मैंने बड़ा पसंद आया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके जो है आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले फीता काटा है हमारी प्यारी सी बहन महानूर ने, कह रही है बाप आपको और युवा अफरीदी भाई को, मुश्क को और नियाज बहादुर को भाई को और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। बाबू आपने कल अपने असूल के खिलाफ मेरे लिए सॉन्ग चलाया, थैंक यू।
1: हाय अल्लाह जी,
0: आखिरी चलाया था बहन, वो हमारे अयूब आफरीदी साहब ने कहा था यार मेरे फरमाइश को छोड़ दो यार, महानूर का फरमाइश को पूरा कर दो। हमने बोला ठीक है जी, आखिरी गाना चला दिया था। अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, नदीम भाई यूसुफ भाई पापोच से आ गए हैं और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम कहा है, आंटी को, चाची को, अरूसा, गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब लाला, वफरान भाई और आपके वालिद साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उमर बाब आ गए हैं और कह रहे हैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, मौला आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, ताकयामत रखे। कादिर बख्श बलोच कह रहे हैं भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप, कल के शो को आसिफ भाई और फगली के मैसेजेस ने ऑफ कलर कर दिया था, किस लिहाज से भाई ये बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम, अनम मेमन कह रही हैं कैसे हैं भाई, आज हम पांच कजन्स आपका शो सुन रहे हैं, सजाद अली का कोई सॉन्ग जल्दी भाई, चलें कोशिश होगी कि जल्दी चलाएंगे, यानी कि समझ रही हैं ना आप। हाँ हमारे इरफान मेमन भी आ गए हैं आपके साथ ही साथ, कह रहे हैं स्वीट सोनियों को इस मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल हो, ऑल मेमन कजन्स और एफएम की स्वीट फैमिली को, मुश्क को एक सज्जाद अली का सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा, नाम लेकर सोनियों बिल्कुल हो जाएगा। आंटी को उन्होंने सलाम कहा है और उम्मे रुबाब को भी सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम दोनों की जानिब से, मेरी प्यारी सी आंटी भी सुन रही होंगी। फरहीन शहजादी कह रही है अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है आपके सोनियों, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। समी आ गए हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप और तमाम लिसनर्स को सलाम कहा है, आते ही इतना सुस्त सॉन्ग, भाई तुम्हारा क्या फुल टाइम भंगड़ा डालने का मूड था, पहले ये बताओ कि नदीम भाई जैसे गाना चलाएंगे तो मेरी परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई बिल्कुल बताइए, सॉन्ग बताइए कौन सा सुनना है तुमने, लेकिन नया सॉन्ग होगा। और हमारे प्यारे से मिर्जा शुजात साहब गुजर खान तो आ गए हैं और कह रहे हैं सलाम अलैकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात। नदीम भाजी तुसी मोटरसाइकिल ते एफएम आंदे हो, कोई गड्डी शड्डी वो ही दे देगा अल्लाह, ऐ कोई गल है। और मेरी प्यारी सी बहन हलीमा पठान भी आ गई हैं और कह रही हैं सलाम अख्तर भाई, क्या हाल हैं, मैं समझी आज शो नहीं होगा, क्यों भाई। देखिए स्पेशल ट्रांसमिशन मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो है वो चल रही है और अभी आपने कुछ देर पहले जो है वो अजमल शोभी भाई का शो सुना और उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े महजूज हुए होंगे और आगे चलकर जाहिर है इनमें जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो यानी कि समझ रही है ना। संजू भी आ गई हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम सलामती की और आफियत की अनगिनत दुआएं, खुश आमदीद, मिजाज और तबीयत कैसी है, तेरी कसम तुझे शामिल ख्याल करते हैं हर इब्तिदा में मगर हर्फ इंतहा की तरह, हर्फ इंतहा की तरह, क्या बात है भाई, इख्तिताम तक साथ रहने की भरपूर कोशिश है जनाब, आपकी कोशिशें जो हैं वो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी क्योंकि गाने ऐसे ऐसे हम आपको सुनाएंगे कि बस आप भी कहेंगी क्या बात है।

रुबाब हसन कह रही हैं सलाम, फातिमा नूर भी आ गई हैं, उन्होंने भी सलाम कहा है, कह रही हैं। भाई आप कॉल लिया आपके बिना, फातिमा नूर पाकिस्तान कराची, सबको अस्सलाम वालेकुम, चाची को भी अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्या लिखा हुआ है मेरी बहन, तुमने सही तरह, ये मुझे हिज्जे नहीं कर पा रहा हूँ इसके, क्योंकि ये उर्दू रस्मुल खत में है और वो भी गलत हो तो फिर यानी कि समझ रही है ना कैसे हिज्जे करूंगा। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब आ गए हैं और कह रहे हैं वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, गाने की फरमाइश की है और खिताब गुल्लाला नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अयूब अफरीदी और तमाम लिसनर्स को और उसके साथ साथ मेरे वालिद मोहतरम को भी उन्होंने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। समी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जरूर दोबारा से कार होगी आपके पास, इंशाल्लाह आए जीता रहे शहजादे। और हलीमा कह रही हैं, क्या कह रही हैं, जिंदगी की ठोकरें भी बहुत निराली हैं, जब भी लगती हैं कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं या फिर किसी की असलियत दिखा कर जाती हैं। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने भाई। इसी बात पर हम एक गाने की जानिब जा रहा हूं मैं। लड़कियों को ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग जो है वो भी बड़ा पसंद होता है। और अरे शोभी भाई थैंक यू वेरी मच, शोभी भाई ग्रेट है यार, क्या बात है। लेकिन हमारी बात बीच में रह गई, सारा तसलसल जो है ना वो टूट गया। लेकिन हमारे सीनियर हैं भाई, उन्होंने अगर वेव किया जाते हुए वो तो करना है। तो हलीमा पठान से मुझे एक हलीमा पठान का मैंने मैसेज पढ़ा और हरे रंग के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो हरा रंग जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन किसी किसी को सूट करता है, हर एक को हरा रंग अच्छा नहीं लगता है। और सादा सूट अगर आपने पहना हो, साथ में दुपट्टे के ऊपर किनारियों पर कोई बेल लगी हो गोटे टाइप की, सादगी में जो है ना हुस्न वो किसी में नहीं होता। तो खैर जिनके पास ऐसे सूट हैं, जिन जिन खवातीन के पास, उनको हम ये गाना डेडिकेट करेंगे। हलीमा जी तुसी भी सुनना जरा, हैं जी ते हैं जी, एलो फड़ो भाई। जिनको पंजाबी का तर्जुमा नहीं आता, हम साथ साथ तर्जुमा भी बताएंगे आपको।

0: मेहंदी और हाथों में चूड़ियां।
1: हरा रंग सजना नू किड्डा सोना पिया जज।
0: हाय हाय हरा रंग
1: रंग सजना नू
0: सजनों को
1: सोना पिया जज
0: कितना प्यारा लग रहा है।

0: Welcome back by Havanity. Havanity. तला अंजुम को तो मेरा ख्याल है आप लोग जानने लगे होंगे, नए नए गाने भी हम चला रहे हैं। इस तरह जो होता है इस तरह के कामों में मैसेजेस आपके आ रहे हैं, जो स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करें 3636 पर। असद इज हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट 7% हैज बीन इंक्रीज्ड इन सैलरी। बहुत ही आला, इतने ज्यादा पैसे ना करो असद। एंड नाउ आई शैल हेल्प द पुअर, मैं इजी पैसा नंबर भेज रहा था। अच्छा जी, 7% आपका इंक्रीज हो गया यार, बड़ी बात है यार। क्या ये हो गया है 7%? हाँ उम्र का टिकट, इतने पैसे बढ़ गए यार। नहीं नहीं, 7% टोटल सैलरी पर एक अच्छी अमाउंट होती है, बुरी अमाउंट नहीं होती है।
1: नॉर्मली जो हुकूमत बढ़ाती है वो 10%
0: शायद 10% होता है, वैसे
1: वो मुख्तलिफ रेशो ऊपर
0: रेशो के साथ हो जाता है। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन अगर ये बढ़ गई है और आप प्राइवेट जॉब करते हैं या जो है गवर्नमेंट जॉब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बात।
1: ये गवर्नमेंट पे अभी हुआ
0: है, अप्लाई गवर्नमेंट पर हुआ है, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप ये बताइए कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे ओके टेक टाइप की, यानी कि समझ रहे हैं ना। तो जरीन बहना का मैसेज हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था जनाब। और अनीस कह रहे हैं, सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? हम सारा दिन इंतजार करते हैं आपके शो का, और आपकी बातें आपकी आवाज दिल खुश कर देती हैं यार, क्या बात है यार। बहुत सारी दुआएं हैं मेरे लिए अल्लाह ताला, अब मैं बहुत सारी दुआएं कर रहा हूं आपके लिए भी अनीस, थैंक यू वेरी मच। महानूर के बाबू, खुशबू नहीं आ रही मुश्क, दोबारा मैसेज आया था भाई मुश्क के नाम के हवाले से। अगर हमारी शो को चंचल सुन रही हो तो उनको हम ये बताएंगे कि हमने जो कह दिया है सो कह दिया है, अब आ जाओ जल्दी से। और आपका इंतजार भी हो रहा है कि भाई मुश्क को आप लोग सबने मनाना है, अब ये आप लोगों का काम है कि आप कैसे मनाएंगे। और बाबू मैंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं मेरा बच्चा तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। शर्मीन कह रही है, सॉन्ग सुना था सेलो सोना साहब को दिन, दिन को साहब, शब हो गया मेरा ख्याल, शब को दिन, दिन को शब, ये बोल याद है और नहीं बताना। लेकिन आप ये शर्मीन बताओ ना, सिंगर वंगर याद है यार? जरा गुफरान भाई, हमारी फर्स्ट टाइम इनका मैसेज आया शर्मीन का, तो इनका गाना जरा तलाश करते हैं। गुफरान भाई हाँ, आपको क्या फायदा होगा, बन कबाब ला देंगे जानू का यार। और वो जानू ने अभी सुना नहीं है ना,
1: आपने तो ड्यू करवाया।
0: मैंने करवाया है ड्यू, लेकिन जानू ने उसको कंफर्म नहीं किया था। आप बेफिक्र हो जाए जनाब, अंडे वाला बन कबाब आपके लिए आ जाएगा, समी ले आएगा यार, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले आएगा समी। शब को दिन, दिन को शब। और शर्मीन हम ढूंढ रहे हैं, मिलेंगे तो हम आपको सुनाएंगे। लाइट नहीं है इसीलिए SMS देर से किया है, जरीन नूर कह रही है। नो प्रॉब्लम मेरी प्यारी सी बहन, आप जब चाहे मैसेज करें, हमें पता है हमारी प्यारी सी बहना सुन रही है। अभी नौरीन तौसीफ भी गायब है। और सलाम की बात करें, कैसे हैं आप नदीम भाई, क्या आज मेरी फरमाइश पूरी हो सकती है? ऐ पख्तों का एक गाना है सॉन्ग, केदा कदम पसर जमा, केदा कदम पर सर जमा, द सिंगर नुम सेदी जी, सवा गोल हमारे प्यारा सबिन कह रहा है केदा कदम। यार केदा कदम पे तो एक मुझे गाना याद आ रहा है, दलता कदम केदा जिने दलता कदम केदा, ये वाला तो नहीं है
1: हाँ? बस
0: केदा कदम
1: दिन, नहीं शब को दिन, दिन को शब,
0: भाई इससे तलाश करें आप, यही तो बात है। शर्मीन जो है वो खुश हो जाएगी। असद कह रहे हैं, अच्छा असद का तो 7% वाला हो गया। असद आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट मैसेज, क्यों कर रहा हूँ वेट एज यू नो। और यार अब यो बाप प्रदीप भाई आ गए, जाने जगर ये हबीबी आपको और महानूर को और GBN को और तमाम सुनने वालों को और प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे आप, 50 मिनट लेट,
2: सो
0: और अनीस कह रहे हैं सॉन्ग तू अच्छा सॉन्ग तो अच्छा लगाया है आपने इस क्या लिखा हुआ है कहते हैं मौके पे चौका, इसको कहते हैं मौके पे चौका। हवा आने दे, हवा आने दे। हाँ जी जी, हाँ जी। चले इसी बात पर हम एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक की जानिब जा रहे हैं। मैसेजेस आपके बहुत सारे हैं और अदील के मैसेजेस आए हुए हैं, मिर्जा साहब के आए हुए हैं, इरफान मेमन के आए हुए हैं, शनाया भी आ चुकी हैं, संजू की भी कुछ मैसेजेस हैं, हलीमा के भी मैसेजेस हैं, फरीन शहजादी के भी मैसेजेस हैं। तो आप सब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके सबके मैसेज जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको जिस ट्रैक की जानिब लेके जा रहे हैं इसमें बहुत सारे लोगों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी मेरे, ठीक है जी। एक तो हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब हैं, ठीक है ना, और दूसरा हमारे इरफान मेमन की जानिब से अरूसा मेमन है और अनम मेमन है और दुआ मेमन है और मेरी टीचर, और उसके साथ साथ जनाब एक स्पेशली हमारी एक और मेमन बहन आई हुई है, उनकी कजन है अपना इरफान की भी और अनम की, महक मेमन भी आई हुई है, और उसके साथ साथ हमारी सायरा मेमन है, और अभी तक आई नहीं है जो, लेकिन फिर भी हम उनको ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, सलीम मेमन साहब है। तो आप सबके लिए जो गाना झुला रहे हैं वो गाना है सजाद अलीदा, और कौन सा है जरा थोड़ा सा चेंज करके लगा रहा हूं, इरफान मेमन के लिए, ये उसकी तमाम कजन्स जब उसको तंग करती हैं तो वो कहता है

0: कुछ लड़कियां देखें मुझे, मुझे तंग करें इस प्यार से, सब बहने भाई तुम्हारी इरफान मेमन, यानी कि समझ रहे ना आप। और इरफान मेमन की ही मैसेज से नहीं बल्कि अयूब लाला की मैसेज से, जिगर आज जावेद अख्तर साहब का यारा मैशअप सॉन्ग अगर हो मानूर और GBM के नाम कर दो। और मुश्क को कह रहे हैं कि प्लीज मैसेज करो और जलने वाले को, जलने वालों को जलने दो। वाह वाह, अच्छा पता नहीं मुश्क सुन रही है या नहीं सुन रही है। मुश्क तीन दफा नाम दूंगा, बस तीन दफा जिक्र करूंगा और अगर नहीं आई तो तुम पर जो है ना फिर एक ट्रीट ड्यू हो जाएगी, ये जहन में रखो। और कहते हैं जी कल तो सुने हो मैं आया नहीं था, मुश्क नाइस पर्सन FM की जान, ये इरफान मेमन कह रहे हैं। और सुने हो मुश्क नाम अच्छा है, ये नाम ठीक है सुने हो, अरे ठीक नहीं है बहुत ही ठीक है। सॉन्ग का सुने हो सबको, सब सो जाएंगे फिर मैं आपको सात एंड तक हूँ। सॉन्ग मैंने जल्दी चला दिया, मुझे अनम ने कह दिया था, अनम ने कहा था भाई गाना जल्दी चला दीजिएगा और मैंने जल्दी चला दिया। और अयूब अफरीदी को सलाम का इरफान मेमन ने, वालेकुम अस्सलाम। शनाया कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सोनियो, कैसे हैं आप, आपके और बाबूजी, आपके बाबूजी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। FM 100 की पूरी फैमिली को शनाया का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और अभी ज्वाइन किया है, यानी कि उन्होंने तकरीबन 6-7 मिनट पहले ज्वाइन किया है। और फुल एनर्जेटिक वॉइस, प्लीज प्ले माई रिक्वेस्ट अमानत अली की वॉइस में। ओके और एक बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने लिखी है आज के हवाले से कि तन्हाई इंसान को ये सिखा देती है कि दुनिया को उसके दुख से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाय तन्हाई में चैन न आए और दिल घबराए, ऐसे लम्हों में वो आ जाए तो मन खिल जाए। बोले बोले
1: सर, परसों आपको फैज अहमद फैज का एक गाना दिया था वैन करके।
0: क्या करके?
1: वैन, WHEN वैन।
0: When?
1: एक रिमिक्स गाना आपने मांगा था।
0: हाँ हाँ,
1: वो गाना ही है।
0: वाह वाह वाह, वो इंतजार था यार, वही है, वो तो हम चलाएगा।
1: इन्होंने इन अल्फाजों में भी अल्फाज खाए हुए हैं।
0: अरे लेकिन उसको अच्छा लगा ना, शर्मीन के लिए हमने इतनी मेहनत की है,
1: डीप मिक्स है,
0: आपने इतनी वो किया, मैं समझ गया है वो कौन सा गाना यार, फैज साहब का यार, बिल्कुल समझ गया यार, तुम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है अब यार, तुम अभी तक गया नहीं है यार, अभी आपने वो जलाने वाला कोई बात नहीं किया है यार। नहीं नहीं, अभी यही चला देंगे हम भाई, हम यही चलाएंगे और फिर हमें शर्मीन
1: आइडेंटिटी हो जाएगी।
0: हाँ जी बिल्कुल, और शर्मीन हमें क्या बताएंगी? हाय जी ठीक है, यही गाना था।
1: ये बताएंगे कि ट्रीट कब देंगे?
0: नहीं नहीं वो नहीं, अभी तो मुश्क की ट्रीट हो गई, अगर वो नहीं आई ना तो उसकी तरफ से ट्रीट पक्की है। हाँ ये उसकी सजा होगी। नदीम भाई गुजर खां, बारिश का सिलसिला जारी है और मेरी दुआ अल्लाह पाक कराची और कराची वालों के लिए भी बराले रहमत बरसाए।
1: कल वो यहीं से बूंदाबांदी करके वहां गए।
0: हाँ यार वहां से कुछ पानी भर गई, इधर ही भेज दो बारिश का। वहां तो ग्रेट सज्जाद अली साहब, अच्छा था अच्छा था अच्छा था ये सॉन्ग भी। कुछ लड़कियां
2: हबीबी
0: देखे मुझे। और जरा तशरीफ रखे आप यहाँ। हनीमा पठान कह रही है भाई काफी टाइम के बाद कम उबाई नहीं आ रहे, कोई बता सकता है कि वो कहाँ गायब है? जो बाखबर जराये से जो कमू भाई के बारे में लास्ट रिपोर्ट मिली थी तो उनकी तबीयत सही नहीं थी और उनको शायद फालिज का अटैक हुआ है, तो जिसकी वजह से कमू भाई शायद सुन रहे हो, तो कमू भाई मिस यू यार। अरूसा के बारे में पूछा नहीं है, चाची के बारे में पूछा नहीं है, इमरान रियाज के बारे में पूछा नहीं है, ये तीनों जो है ना बस मैं इनसे कुट्टी होने वाला, नहीं चाची से नहीं बाकी इन दोनों से होने वाला हूँ। कुट्टी का भी अपना एक मजा है, हैं जी ते हैं जी। अधीक बहुत बहुत शुक्रिया भाई, करें नाइस लव इट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी तो उसकी भी तारीफें आ रही हैं। संजू कह रही हैं जरीनूर और नौरीन बहना के लिए प्यार और दुआ कह दें। कह दिया नौरीन बहना को, तो हम याद भी कर रहे हैं। नौरीन बहना पता नहीं कहाँ गए, मेहमान शेहमान, अरे वहां बारिश हो रही होगी। और दूसरों की खातिर اپنی برداشت سے باہر نکل کر قربانیاں دینا اسار نہیں بلکہ اپنے وجود کا بتجرید احتسال ہے. واہ واہ واہ واہ بھائی, کیا اقتباس آیا, کیا اقتباس آیا ہے. اور سمی کہہ رہے ہیں اگر یہ پاکستان ہوتا تو بتاؤ. سبھی کہہ رہے ہیں پانچ بہنیں بہت مصروف ہیں, فریحہ پڑھ رہی ہے, سنا کھانا پکا رہی ہے, ہینا شطرنج کھیل رہی ہے اور ماریا کپڑے دھو رہی ہے. پانچویں بہن کیا کر رہی ہے فری؟ بتاؤ بھائی. غفران بھائی یہ آپ سے سوال ہے, یہ اس نے بھیجا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی. پانچ بہنیں مصروف ہیں, فریحہ پڑھ رہی ہے, سنا کھانا پکا رہی ہے, ہینا شطرنج کھیل رہی ہے اور ماریا کپڑے دھو رہی ہے. پانچویں بہن کیا کر رہی ہے؟ وہ تم سے فون پہ بات کر رہی ہے. میرے کان میں ہاں وہ میرا شو بھی سن رہی ہے. بھائی غفران بھائی نے کہا ہے کہ وہ میرا شو سن رہی ہے اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم ہمارے سے فون پہ بات کر رہی ہیں, ہماری بھابھی ہونے والی
1: تو فی الحال ہو گئی ہیں.
0: اچھا کتنے زبردست ہیں یار غفران بھائی, یار آپ کا دماغ بہت کام کرتا ہے, اسی لیے سمی ایکٹیو ہے ورنہ اس وقت مصروف ہوتا. ایوب لالا کہتے جگر اگر آج مشک نہیں آئی تو ایک کلو گلاب جامن کا جرمانہ عائد کر سکتے ہیں. بس ایک کلو گلاب جامن, لیکن غفران کو تو کچھ اور پسند ہے. مٹھائی میں کیا پسند ہے آپ غفران؟ مٹھائی میں کیا پسند؟ انہوں نے تو گلاب جامن کا ہے. نہیں آدھا کلو چمچم, آدھا کلو گلاب جامن, ہاں تاکہ مطلب ہم دونوں کھا لیں گے نا. آدھا کلو چمچم اور آدھا کلو گلاب جامن. ہاں بھائی مشک. سنجو کہتی ہیں کہ شو اچھا چل رہا ہے. ہاں کتنی سمجھدار ہے سنجو. شنایا کہہ رہی ہے پانچویں بہن میسج پڑھ رہی ہے. آپ تمہارا میسج تو تم بھیج رہی ہو. اچھا جی ندیم بھائی, اچھا یہ میسج میں نہیں پڑھ سکتا بھائی, یہ ہماری مینجمنٹ کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. غفران بھائی تک پہنچا دیں گے آپ کو آپ کا یہ پیغام. لیلا کہتا ہے کہ ارم اور پانچویں بہن, اچھا یہ ایوب لالا کہہ رہے ہیں کہ پانچویں بہن جی وی این ہے. یہ صحیح ہے بھائی, بھائی سب بات بتایا پانچویں بہن کون ہے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور اللہ جی قادر بخش بلوچ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سانپ چلا گیا اور ہم بھی ابھی تک لکی پیٹ رہے ہیں. ارے قادر بخش تم بھی بہت پیاری پیاری باتیں لکھتے ہو, سب بات تو صحیح یہ ہے اصل میں. قادر بخش وہ ہمارے آصف صاحب کہاں ہیں, ان کو کل کے میچ کا ابھی تک دکھ ہے کیا؟ ارے واہ بھائی واہ. اور ایوب افریدی بھائی کہہ رہے ہیں جگر آج جاوید اختر صاحب کا سانگ بالکل چلے گا جناب, بالکل چلے گا. مانور کری بابو لگتا ہے میسج پڑھ لوں بھائی. ایوب افریدی بھائی سستے والا, ارے میری بہن ہجے کرنے پڑیں گے, ابھی پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھائی. بہت زیادہ جو ہے میسیجز آ رہے ہیں تو میں نے گانے کی جانب بھی جانا ہے اور یہ ٹریک جو ہے یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ہمارے پیارے سے سمی کی جانب سے ان کی ہونے والی زوجہ کو.

वेलकम बैक। न दिन को शबशे और ना शब को जिनशे, भाई यही एक आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी चॉइस स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुन। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक। अनीस कह रहे हैं कि मेरी तरफ से मुझको सॉन्ग डेडिकेट कर दें आबिदा परवीन का, कोशिश करेंगे जी। यही है गाना, थैंक्स आपको और गुफरान भाई का अगेन थैंक्स। मजा आ गया, मजा शो में चलाते रहा करें जी। मैं चलाता रहता हूँ, सच्ची में चलाता रहता हूँ, इसीलिए आपने इस गाने का टाइटल है इंतजार, यानी कि समझ रही है ना आप। हाँ, इंतजार कहती तो ये फौरन मिल जाता। और कादिर बख्श भाई कह रहे हैं कल आप लास्ट में जो सॉन्ग मानूर जी को डेडिकेट किया था वो प्ले कर दें, जमा सरदारा दामिन यारा। आज हम दूसरा करेगा, वो हमें पता है अयूब आफरीदी भाई ने तो कहना ही है, कहना ना उनकी जानिब से गाना तो डेडिकेट होता ही होता है। अब अयूब आफरीदी भाई आप बताएं पांचवी बहन कौन है वो आपने तो सुलाया हुआ है उसे गुफरान भाई ने सुलाया हुआ है। और शुक्रिया का मैसेज आया है हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का, और भाई जीते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, वाह भाई वाह, मिस्टर बीस्ट कौन है बताएं, बीस्ट है ना, मिस्टर बीस्ट कौन है आप ये बताइए। और जनाब मैसेजेस तो आपके आ ही रहे हैं, अब वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है तो क्यों ना एक और फरमाइश की जानिब जाया जाए। परवेज साहब ने हमें सक्कर से मैसेज किया था और कह रहे थे कि एक सही सिंधी गाना अगर हो जाए तो क्या बात है, तो सही आपके लिए सिंधी गाना, और ये गाना हम समी को भी डेडिकेट करेगा।

वेलकम बैक एंड आई होप कि आपकी फरमाइशें भी सारी पूरी हो जाएंगी। कहाँ है और जनाब शनाया कह रही हैं भैया मेरा वाला सॉन्ग चलेगा चलेगा। और हमारे अयूब लाला कह रहे हैं मोश प्लीज आ जाएं आप, मेरी तरफ से आपको अजबा खजूर का सलाम। वाह वाह। और जनाब अरे क्या बात है भाई डैशिंग, आज मैं भी आपको सुन रही हूँ, कैसे हैं आप? ये कह रही हैं कायनात बेबी, बेबी भी आ गई है जनाब। और मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ। सही है भाई, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आई थी यहाँ समरीन नीली आंखों वाली समरीन बलोच भी आ गई हैं और वो कह रही हैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मुस्कुराती रहे। और शुक्रिया नदीम भाई, ये सिंधी सॉन्ग थोड़ा बहुत समझ आता है पर इसके मॉडल पूरे समझ में आ रहे हैं तो मैं सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। और उमेर भट्टी साहब महमूदाबाद से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, शहनाज बेगम का

है। उमेर पट्टी साहब, ये नैयरा नूर साहिबा ने गाया हुआ है। सर थैंक यू सॉन्ग के लिए। परवेज साहब कह रहे हैं सखर तो आए है, सखर से मैसेज आ गया फिर। चले इसी बात पर हम जाएंगे एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब किनको, आप सबको, किसकी जानिब से? शनाया की जानिब से। एलो फड़ो, चल जा भाई, चल जाएगा, डोंट वरी, चल गया।

वेलकम बैक। एतबार आपके वादे पर कर लिया। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। मैंने एक सवाल पूछा था, मिस्टर बीस्ट कौन है बताओ तो सही। सलाम सुनियो, मैं आजकल जादू मंत्र सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चुड़ैल को काबू करना है। ये कह रहे हैं सलीम मेमन। वो आपके काबू नहीं है, बल्कि वो आप उसके काबू में। अब ये आप समझ जाए तो बात है। और जनाब रुख्सती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने दूल्हे को चमाट दे मारा क्योंकि उसकी रिंग टोन थी। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शनाया ने थैंक यू कह दिया भाई सॉन्ग के लिए। और फरीन कह रही है तेरे अद छटाकी दिल पीछे असा लखा दी जान तबाह की। क्या बात है, तुम्हें पंजाबी आती है, जबरदस्त। और जनाब क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, गाने बहुत सारे चलाने हैं, तो जाएंगे एक और ट्रैक की जानिब। और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे मानूर की जानिब से। एलो पढ़ो मानूर की जानिब से नहीं जनाब, सॉरी, सबा गुल ने इसकी फरमाइश की थी और लाला ने बोला था यार चलाओ।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अब थोड़ा सा बातचीत हो जाए आपसे तो ज्यादा अच्छा है। चंद मैसेजेस जो रह गए हैं आपके वो शामिल शो करते हैं। सुने हो कल घर का पंखा बेचने वाला चुटकुला मुझ पर बहुत भारी पड़ गया। इसका जवाब मैं कल नहीं परसों के शो में दूंगा क्योंकि आज मेरा बैलेंस नस गया यानी कि भाग गया। ये कह रहे हैं हमारे पैर से सलीम यमन साहब। खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। देखभाल कर चुटकुले जो है वो भेजा करें। और जनाब उम्मीद करता हूं कि ये ट्रैक जो है वो भी आपको पसंद आया होगा और आज थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ही रहा एंड कोई खास बात नहीं कर सका। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा आखिर में कि हम लोगों में एक आदत है, आप में भी होगी मुझ में भी है, कि शौरी और लाशौरी किसी ना किसी तरह किसी का भी दिल मत दुखाया करें। कोशिश किया करें कि आपकी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हर इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई गलती या दिल दुखाना कसदन किया जाए तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि किनारा कशी बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती या आपसे मिस्टेक ऐसी हो जाए, लाशौरी इसको कहूंगा मैं, कि जिससे कसदन किसी ने ऐसा ना किया हो और कुदरती तौर पर वो अमल ऐसा हो जाए कि जिससे आपका दिल दुखा हो, परेशान हुए हो, तो कोशिश किया करें कि नजरअंदाज करें और माफ करना सीखें। यही बात जो थी वो आज की थी। आज हमने कोई टॉपिक नहीं रखा, ना ही हमने कोई जो है इस हवाले से बात की कि कोई सवाल वगैरह जो मैं करता हूं अक्सर आपसे, ऐसा कोई नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस हुए और सिर्फ आपकी फरमाइशें चली। ऑलमोस्ट तकरीबन सभी की फरमाइशें 99.9% आपकी डेडिकेशन और फरमाइशें जो हैं वो पूरी हुई हैं। कुछ तब्दीली लगी आपको? लोगों से पूछ रहा हूं। तुफरान भाई सामने बैठे हुए हैं, कह रहे क्या तब्दीली भाई। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कभी कभी इंसान को खुद को भी बहलाना चाहिए, बहकाना कह रहा हूं। तो समझ लीजिए कि आज हम अपने आप को बहला रहे थे। और उमेर भट्टी साहब कह रहे हैं कि शहनाज बेगम की आवाज में भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन असल में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था उमेर भट्टी साहब वो हुआ था नैयरा नूर साहिबा की आवाज में। लेकिन आप शहनाज बेगम की आवाज में सुनना चाह रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है सुनकर भी। देखो भाई दोनों सुने हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, मैं इससे इनकार नहीं है, मगर मुझे नैयरा नूर साहिबा ज्यादा पसंद है, सो इस वजह से कह दिया था, जिसके लिए माजरे चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं सोचे,
1: बेगम की आवाज में तो हर चीज अच्छी लगती है।
0: हाँ ये बात भी सही है उमेर भट्टी साहब, बेगम की आवाज में हर चीज अच्छी लगती है, तो फिर शहनाज बेगम ने गाया हो तो फिर तो बहुत खूब यार माशाल्लाह। जाने से पहले पहले कहाँ हो तुम, चले आओ, अगर हो जाए तो क्या बात है। चलिए कोशिश करेंगे, आप मेरे एड्रेस भेज तो वहां पर मैं आपको भेज दूंगा गाना। कहना ये चाह रहा हूं कि साइन आउट करने के बाद गाने चलेंगे तो उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी पसंद का ये गाना भी हो। सुनते रहिएगा क्योंकि लास्ट में जो ट्रैक चल रहा है उसकी फरमाइश पहले से आई हुई है, हमारे अय्यूब आफरीदी लाला ने फरमाइश की हुई है। जावेद अख्तर साहब की आवाज में उनका मेडले है जिसमें उनके चार पांच गाने जो हैं मोस्ट पॉपुलर गाने जो हैं उनका एक मेडले उन्होंने बनाया हुआ है, वो हम आखिर में आपको सुनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी जनाब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: अभी अभी फिर इधर और रुक जाना, बहुत मजा आ रहा है।
1: बस मैं चलती हूँ, इट्स वेरी लेट, खाला को बता देना।

0: Sufi Special Quality Soap aur Sevaiyan.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: कोहेतूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है। खुदा है।